आगे पश्चिमी गाड़ी पर से चारों पर तैयार था कि दंपति सहित नौ संपत्ति माध्यम गाड़ी त्रिकला की संकलन गाड़ी त्रिकला की भाजपा

संसारिका समूह बाकी अध्यक्ष प्रज्ञा का अनुसार कार्यक्रम में 35 जना

संसार के अंदर पाने की सलाह का एक तरीका चल राष्ट्रीय समाचार वातावरण राजनीतिक कोशी छोटे कोशी नदी में टायर को विनाशकारी पानी के क्षेत्र प्रभावित रसुआ गुमा होटल आदि लगाया का क्षेत्र में खोज तथा उद्धार कार्य आज एक आयाम दिन पर नियुक्ति का रूप में जारी

0: आणि त्वचित वाचन करताना मग केसूचे उत्तर
1: आपण प्रत्येकी शिक्षकी कला पुस्तक मागण्यासाठी वर्ल्ड ऑफ पासवर्ड मार्फत पशुपतीनाथ सप्लायर्स मार्फत इंडिया इटालियन हॅन्ड्रेड हॅरिकॉर चायचो इंडियन मिलिटरा कंबाईन मिल राईस मिल सारा मशीन हार्वेस्टर सातपाटर नगर पशुपन सिंह तालुका नाम ग्रेट मशीन बढ़िया कस्टम सेंटर खेती किसानी करना सब मेरी सामान उपलब्ध था उसे हिसाब बिगड़ सब मेरी कृषि का मशीन के पीछे छुटमा पर आधारित खबर करने से खाना में जाकर तो बना लेता हजुर आफ्नो किस सम्बन्धी कुन सामान किन्न चाहन्छ यदि चौकी कल से सम्झौता पाँच सुनि मार्फत पशुपतिनाथ सप्लायर छ
0: सम्पर्क गर्नुहोस् 98565 2506 हो 98565 2506
1: नवजीवन सरकारी संस्थाको पछि ग्रामको सम्बन्धमा समस्या रूपको उत्थान गर्न जानकारी कराएकी

0: छतरी जानकारी दिन आपत्कालीन अवस्था में कहाँ कल करने नेपाल का हरेक देश सुन्न सुन्न वा एघारह तेरह मानव बेचबिखन युद्ध कटो एघारह सतहत्तर तथा बाल हेल्प लाइन 10-9-8 में कल करोस
1: सुरक्षित समाज मानव बेचबिखन युद्ध सहयोग के साथ हमी

उनकी सुनसानी के गाना बड़ा बड़ा ओकर पसंद ना नंबर वन सुनसानी गाना तैयार करे तो और कलर अनुसार गाना फिर बनी था हमारे नेपाल का गाना तो थोड़ा दूर थोड़ा ढेर धारा लागत हमारे पूरा दिन चल जाए

0: इसी पर आता रही है बढ़िया फिर वो बहुत बढ़िया चीज हो तो फिर बहुत प्रकार
1: रेडियो गोपाल एफ एम 107.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: कल्याणी सुधाई स्वस्थ भाई सुरक्षित परिवार
1: द्वारा जय श्री
2: पूजा।

0: तपलिंग की संचालक समिति में से 40,500 प्राप्त हुआ। उसने लाइफलाइन जनरल हॉस्पिटल में से 75,000, नीरू रेग्मी मुक्ता रेग्मी को अनिशा रेग्मी से 25,000, सुना खरी रेस्टोरेंट में से 51,000, राम शंकर गुप्ता से 1,11,000, नेपाल पत्रकार महासंघ पार्टी में से 51,000, नेपाल गंज उत्तर प्लानिजेशन से 6,01,000 रूपया सहित प्राप्त हुआ। प्रशासन जरिया उसने का आदर्श माध्य नेपालगंज का 10,34,540, नेपालगंज बहुमुखी कैंपस में से 42,682, साइना कैफे में से 1,11,000, बांके कला केन्द्र नेपालगंज में से 51,000, मदन प्रसाद बहुना माध्यमिक विद्यालय नेपालगंज में से 32,500, और नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवलर्स एजेंटा में से 51,000 रूपया सहयोग प्राप्त हुआ। प्रमुख जिलाधिकारी दिल कुमार तमाम विपद में पड़ा नागरिक उद्धार तथा राहत कला पाठ में से निर्मित क्षेत्र क्षेत्रको मनाइ तथा संघ संस्थाहरूले सहयोग गर्न बदलबाट बाँकी मसे 1,52,000 सहयोग, नेपाल मजदुर पानी सन् 6,01,000 रुपियाँ सहयोग गर्दा प्राप्त रकम प्रधानमन्त्री दैविक प्रभु पुत्र कोष मसे पुटिकोशी पिया प्रभावित नागरिकता राहत तथा पुनस्थापनाको उपयोग गर्न जनाएका। आफ्नो राष्ट्रिय समाचारको कार्य
1: नेपाली कांग्रेसको सभापति गगन कुमार थापा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र शाह अनि संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव

0: नहीं थोड़ा पुण्य चल रही है कुछ करेंगे तो सब कुछ दिखाई नहीं रहता है
1: बेटा होगी
0: ভাবা দেশের সবাই সব খুব গরম পাবে না ওখানে তো ফুটাবে না।